0: मन च आस है कि गुरु जी दे दर्शन करा चल के
1: जब दिन जाम रहे हो तब आएव।
0: जदो एक पहर दिन रह गया ते गुरु दा सिख पहुंचिया अमृतसर।
1: बिखै ना प्रिथिया आप बचाएव।
0: सो गुरु दा सिख सुचेत है। अरखी गुरु अर्जन देव जी ने कहा सी सुचेत रहना है। सो इन्हें चार सिर चंगी तरह निगाह मार ली के किते बाबा प्रिथी चंद ते है नी। चंगी तरह वेख्या उसने
1: सतगुर जहां दीवान लगाएव।
0: जिस थां ते श्री गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने दीवान सजाया है।
1: प्रविश्यो तहां अचानक जाएव।
0: उस स्थान ते अचानक अचनचेत जिहड़ा सी ए गुरु दा सिख पहुंच गया अख बचा के।
1: हाथ जोर बंधन कोठानी।
0: हाथ जोड़ के ते गुरु महाराज दे चरणा ते नमस्कार कीती सिख ने।
1: की नमो बखानी।
0: फिर संगत वालों नमस्कार जड़ी है ए कीती मारे। संगत भी सारी लाहौर दी तुहाडे चरणा ते नमस्कार करदी है।
1: कर पर धर अरदास अगारी।
0: सो जड़ी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने शब्द दा तीसरा बंद अरदास बेनती दे रूप विच भेजिया सी ओ महाराज दे सन्मुख हाजिर कीता।
1: श्री अर्जन की अरज उचारी।
0: इस शब्द विच साहिब गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी

किया अकारा, गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवै सो सच बूझै, शब्द सच्चै सुख ताहा हे। गुरमुख जाता कर्म विधाता, जुग चारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा हे। गुरमुख नाम

आपे कथी अकथ कहानी आपे शब्द सदा गुरदाता हर नाम जप संबाहे तू आपे करता सिरजनहारा तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा गुरमुख नाम देव है तू आपे सहसा गणत न ताहा हे भगत सच्चे तेरे दरबारे सबदे सेवन पाए प्यारे।

काया कंचन कोट अपारा, जिस विच रव्या शब्द अपारा, गुरमुख गावे सदा गुण साचे, मिल प्रीतम सुख पाए दा। काया हर मंदर हर आप सवारे, तिस विच हर जीओ वसै मुरारे, गुर कै शब्द वण

मन तन धोवह शब्द विचारी अन दिन सदा रह रंग राता कर कृपा भगत करायेदा इस मन मंदर मह मनुआ धावै सुख पल्लर त्याग महा दुख पावै।

रैन दिन सदोए साखी आए, मन मुख अंध न चेतै मूड़ा, सिर ऊपर काल रूआए दा। मन तन शीतल गुर चरणी लागा, अंतर भरम गया पाओ भागा, सदा आनंद सच्चे गुण गावहे, सच बाणी बोलाए दा। जिन तू जाता कर्म विधाता, पूरै भाग गुर शब्द पछाता, जात पात सच सच्चा सच सोई, हउमै मार मिलाए दा। मन कठोर।

नामो नाम सदा सुख दाता, नामो लाहा पाए दा। बिन नावै सब दुख संसारा, बहु कर्म कमावै वधै विकारा। नाम ना सेवै क्यो सुख पाईऐ, बिन नावै दुख पाए दा। आप करे तै आप कराए, गुर प्रसादी किसै बुझाए। गुरमुख होवै से बंधन तोड़ै, मुक्ति कै घर पाए दा। गणत गणै सो जलै संसार।

जमकाल तिस नेड ना आवै महल सच्चै सुख पाए दा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे भाग गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देव है सो पाए दा अंदर परगास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान रतन सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाए दा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अपागे चल दिया घर दर नदर न आवै जम दर बाधा दुख पाए दा बिन सतगुर से

ताको कोय न साकस मारा। सो ऐसा हर सेवहु संत हो जाकी उत्तम बाणी है। जा जापै किछ किथाऊ नाही ता करता भरपूर समाही। सूके ते फुन हरिया की तोन हर त्यावो चोज विडाणी है। जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हो कुर्बाने। तिस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी है। जो जिये की सार ना जाने तिस स्यों किछ ना कहिए अजाने। मूर्ख स्यों ने लू

0: ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਪਾਥਰ ਕੀਠ ਪਖਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਮੀਤ ਸੁਤ ਭਾਈ, ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਕਿਸੈ ਸਾਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਪਰਾਈ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਬਨਵਾਰੀ, ਸਵਿਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੈ ਥਾਰੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਭਵ ਖੰਡਨ, ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਜੋ ਸਰਨ ਪਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਜਾਏ ਪੁੱਛਹੁ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
1: 1550 KRPI ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਸਰੀ।
2: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ, ਫਰਨਡੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
3: ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਜ਼ਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ। ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਨਾ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ। ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੇ ਭਾਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣਾ ਉਸਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਨ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਦਮ ਹੈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਮ ਗਰਮ ਯੇ ਮਹਿਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਕਲ ਸੇ ਆਗੇ ਕਿ ਯੇ ਨੂਰ ਚਿਰਾਗੇ ਰਾਹ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਬੰਦੇ, ਅਕਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪਹੁੰਚ, ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪਹੁੰਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਕਲ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅੰਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਉਲਝ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਤਨਾ ਤਨੀ ਰਹੀ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਜਹਾਂ ਪੇ ਥੀ ਵਹੀਂ ਪੇ ਰਹੀ। ਆਖਿਰੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਖਪੀਏ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਦ ਐਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੌਧਕ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਸ਼ਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਤੜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੇ, ਤਿਉਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ ਇੰਜ, ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਛਲੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਊ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸਦਾ ਬਛੜਾ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਵੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਛੀਣ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਝਣਾ, ਬਸ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਘਟੀ, ਭਾਵਨਾ ਘਟੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਿਆ, ਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਜੋੜੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਾਰੀ, ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬੌਧਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਤੜਪਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਚ, ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ਰਧਾ ਛੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਸ ਆਨੰਦ ਔਰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੜਪਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਵੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਪੂਰਵ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। भगत ने ते रस माणे है। भगत नूं ते उसदी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है क्योंकि वह जुड़िया होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार उहदे सिर्फ विचार कर रहे है, उहदे सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहे है। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है, भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहिंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड होए कैसे, जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही। ये भगत विचारां दा ते सिर्फ प्रयोग करदे ने, जीवले ने हिरदे दे तल ते, भावना दे तल ते, और जद भावना करके प्रभु नाल जुड़दे ने तो इना दे अंदरों जो गीत फुटदे ने, जो ज्ञान फुटदा है, वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ां दे चों कोई झरना वग तुरिया है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने, ज्ञान कितना महान है, उना दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है। आम गाथा है और ओ भाई साहब भाई गुरुदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया, नामदेव नू आख सुनाया। नामदेव नू सारी गल सुना दी, ठाकुर दी सेवा करी, घर विच मूर्तियां रखियां सन, ते नामदेव नू कहिंदे ने तू अमृत वेले उठना है, तू ठाकरा नू इशनान कराण लई नदी तो मांझी हुई गागर विच जल भर के लियाउणा है, पवित्र गागर विच जल भर के लियाउणा है ते ठाकरा नू इशनान कराणा है। बगीचे विच जाके फुल तोड़ने ने, बगिया विच जाके ते तोड़े हुए फुलां दी माला बना के ठाकर दे गल विच पाणी है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर विच जिहड़ी कपिला गऊ है उसका दुध चोके तू ठाकरा नू पिलाणा है। ये सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी, चूंकि अज किधरे बाहर कम कार लई जा रहे है तो नामदेव नू कह दिता है, जितने चिर तक मैं नाम आ ए सारा पूजा ए सारा अर्चा बंधन तू करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे सुभाव मुताबक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त विच, गागर पित्तल दी सिर ते रखी है, नदी दे तट ते गए ने, गागर खूब मांझी है, इशनान कीता है, गागर नू भरिया है, ता आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई, मछलियां ते पै गई, कुछ मेंढक सन उना ते पै गई, कुछ कछुए सन उना ते पै गई। आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया, आनी ले कुंभ भराई ले उद्दक, ठाकर कोई स्नान करो पर 42 लख जीव जल में होते, बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र देश प्रभु दा एक नाम बीठल भी है, उसे दाई आप प्रयोग कर देने, बीठल नाम दा एक मंदिर भी है, बीठल मंदिर पंडरपुर देश, और ओ तीरथ है और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं, ऐ बीठल दस मैं की करा, मैं पानी भरया है, गागर मांझी है, तेनू इशनान कराना है, पर करा की पानी पवित्र नहीं है, क्यों के 42 लख जूनिया ते आखर पानी दे च ने, ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने, जन्म उना दा पानी दे च, जीवन उना दा पानी दे च, मरण उना दा पानी दे च, सारी क्रिया पानी दे च, और ए कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबक 84 लख जूनिया ने, जेदे चो 42 लख जल दे च ने, 21 लख थल जंतु ने, और 21 लख नभ जंतु ने, आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है, पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहिंदे ने, जद जीवन पानी दे च है, जन्म पानी दे च है, मरण पानी दे च है, ए पानी पवित्र नहीं हो सकदा, इते अपवित्र है, हे प्रभु मैं इस जल दा तेनु इशनान नहीं कराना। खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना, पानी ते अपवित्र है ते ए ते ठाकरा नू अपवित्र करना होवेगा। पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है गालबन 11 साल दी उम्र विच, छोटे ने बच्चे ने, पिता बाहर जा रहे है ते पुत्र नू समझाया है ये सब कुछ तू रोज करना है, पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने ते बुद्धि इतनी उज्जवल है। आप कहंदे ने नहीं, ये जल ते अपवित्र है ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनू इशनान करावा ते किवें करावा। छोटी जिही टोकरी लेके आप बगिया विच गए, फुल तोड़न लगे ने ते फुल्लां दे उत्ते मंडला रहे ने भौरे तितलियां। आप देख रहे हैं एकदम हैरान होए कि शहद दियां मक्खियां भी फुल्लां दे चों रस कढ रही ने। आप कहंदे ने फुल भी पावन नहीं ने, पवित्र नहीं ने, इन्हां दा रस ते भौरे लै जांदे ने, इन्हां दे चों रस ते शहद दियां मक्खियां कढ के लै जांदियां, तितलियां कढ के लै जांदियां। लिहाजा इन्हां फुल्लां दी माला परो के हे ठाकर मैं तेरे गले किस तरह पावा, जबकि इन्हां फुल्लां दा इस्तेमाल भौरे पहले ही कर लेंदे ने, तितलियां पहले ही कर लेंदियां ने, शहद दियां मक्खियां पहले ही कर लेंदियां ने। आ नीले फूल परोई ले माला, ठाकर की हो पूज करो पर पहले बास लई है भौरे, बीठल भेला काहे करो। हो बहु इस तरह दा वाक भगत रविदास जी महाराज दा भी है। माई गोविंद पूजा कहां ले चराओ, अवर ना फूल अनूप ना पाओ, दूध ता बछरे थनो बिडारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तेनु इशनान करावा, वो ते जल अपवित्र कर दिता है मीन ने, फूल ते अपवित्र कर दिते ने, भौरियां ने, तितलियां ने, शहद दियां मक्खियां ने। हुण आपनो ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी कपिला गऊ दा दुध ठाकरा नू पिलाना, तो अपनी माता नू आख्या गऊ चो दिओ दुध चाहीदा। नामदेव दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया, बछड़ा थण चुंगण लग पिया, ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नू कहंदे ने पहले ए बछड़ा दुध पिएगा। हां मेरे बच्चे पहले बछड़ा दुध पिएगा ताही गऊ दुध देंदी। तो आप कहन लगे मां मैनू ये दुध नहीं चाहिदा, इस दुध दा भोग मैं ठाकरा नू नहीं लवाना। क्यों? आ नीले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो पर पहले दूध बितारो बछरे, बिठल भेला काहे करो। हे बिठल दस मैं की करा, ए दूध ते पहले चुंग गया बछड़ा, उन्हें पवित्र कर दिता है थना दे दूध त बछरे थनो बिटारे हो। भगत रविदास जी महाराज कहंदे ने आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो पर पहले दूध बिटारे हो बछरे, बिठल भेला काहे करो। ए बिठल दस मैं की करा, दूध ते अपवित्र हो गया, इते पहले बछड़े ने पी ले ते मैं ते तेनू पहले भोग लवाना सी, पर इते बछड़ा ही पहले भोग ला गया और थना दे ही झूठा कर गया, तो मैं इसका भोग लवावा ते किवें लवावा। अज पूजा नहीं हुई, अज ठाकरा दा इशनान नहीं होया, अज ठाकरा दे अगों दुध नहीं रखया गया, दुध नहीं पिलाया गया। आप बैठे ने सोच दे पिता नाराज होवेगा, पिता औखा होवेगा। इस तरह दियां सोचां विच आप पए ने ते आप दे अंदरों अमर धुनि इंज उठी, ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। हे प्रभु जद मैं सोचया कि तेनू इशनान करावा ता तू मच्छी हो के पहले आप ही जल विच इशनान कर रहे हैं, मैं तेनू की इशनान करावा। हे प्रभु जद मैं तेनू सोचया तेरे बारे सोचया कि इशनान करावा ता ए भी विचार पैदा होए कि इशनान ते उसनू कराया जांदा है जो मैला हो जाए, क्या तू मैला हो जाना है। साहिब कहंदे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज हम मैले तुम ओझल करते हम निर्गुण, तू दाता, तू ते उज्जल है, तू ते पावन है, तू ते पवित्र है, मैले ते असी हो जाने, सड़ा तन मेला, सड़ा मन मेला, हे प्रभु तू ते निर्मल है, तू ते स्वच्छ है, तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने, इशनान ते मैं तेनू तां करावां कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं, और तेनू की इशनान करावां, तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे, सागरां विच रह रहे, दरियावां विच रह रहे, झीलां विच रह रहे, तेनू की इशनान करावां। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया, हे प्रभु जल दे चितों, मच्छी दे चितों, तू ते व्यापक है, ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थन अंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचया कि तेनू फुलां दी माला बना के पहनावा, ते तू तितली होके, शहद दी मक्खी होके, भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना, आप ही भोग ला लेना, गऊ तू, बछड़ा तू, दुध तू, तू ही तू है, इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थन अंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेव्या, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नो, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों, पर नामदेव जी महाराज कहंदे ने, मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनो श्री नंदलाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक के बुद्ध, जाहिद फिदाए खानकाह, हर कुजा जामे मुहब्बत, दीदायम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा है तेनू बुतां दे चों, और मुस्लिम लभदा है तेनू खानकाह दे चों, पर हर कुजा जामे मुहब्बत, मैनू ते हर थां ते तेरी मुहब्बत, तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, हर पासे तू ही तू है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे, हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीद, ना में सोई सेव्या, ना देहुरा ना मसीद, तो फिर किथे है, जे मंदिर ते मस्जिद दे च नहीं तो फिर किथे है। तो नामदेव कहंदे, सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, मेरा राम घट घट दे च बोल रहे है, और राम तो बिना कौन बोल सकता है, राम ही बोल रहा है, पशुआं देच राम ही बोल रहा है, पक्षियां देच राम ही बोल रहा है, मनुखां देच राम ही बोल रहा है, पवन दी शांशां देच राम ही बोल रहा है, सागर दे गर्जन देच, बदलां दे गर्जन देच, और सागर दी गर्जन देच ही नहीं, प्रभु बोल रहा है कोयल दी कू देच, बुलबुलां दे चहचहाण देच, हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं, सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं, सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि रिच प्रभु एक व्यापक सत्ता है, वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़िया टुकड़िया दे च नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है, पर उस तक किवें पहुंची है, ते उसनू किवें प्राप्त करी है, नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछलो, मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो, खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए, ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है, किवें पहुंचिए, मार्ग की है, आखिर रस्ता की है। तो नामदेव कहिंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदिया ही मार्ग बनदा है। आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दिया ही रस्ता बनदा है, ते मच्छी दे चलदिया ही सागर विच मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देंदा है, तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जब चलांगे तो चलदिया ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखने हां कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जांदी है, एक रेखा बन जांदी है, एक मार्ग बन जांदा है। अध्यात्मक मंडल विच ऐसा है, वाहिगुरु जपना आरंभ कर देंगे, बस आरंभ करदिया ही मार्ग बनदा है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनदा है, उंज कोई रस्ता नहीं, इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक। जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचदा है। इसनु खोलिया परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने। गुरुमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा, गुरुमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरुमुख जिड़ा है वो परमात्मा दी खोज इस तरह कर लेंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदी है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जांदा है। बिना मार्ग दे उड़दिया ही मार्ग बनता है, चलदिया ही मार्ग बनता है। इस तरह गुरु का सिख जब जपदा है तो जपदिया ही जपदिया परमात्मा तक पहुंच जांदा है, ईश्वर तक पहुंच जांदा है, अकाल पुरख तक पहुंच जांदा है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है, राम राम जपदिया ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल दे चलीन, श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राही जगत नूं बिठल दे चलीन करदे रहे, राम दे च लीन करदे रहे, और भ्रमण करदिया करदिया अनेकां नूं आपने राम दे चलीन कीता, बिठल दे चलीन कीता, और लीन करदिया करदिया एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल दे च लीन हो गए, उस प्रभु देच लीन हो गए। और लीनता ऐसी हुई, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।
4: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

पर लीला भ्रष्ट ना कर देवे। जीवन दा लक्ष्य उच्चा इखलाक बनाओ, उच्चा आचरण बनाओ, पर जीवन नु फिर भी रास लीला दी तरह लेना। कल युग एक बुढ़ा युग बिरध अवस्था, बुढ़े तोते नो पड़ाण लई आए धन गुरु नानक। मर्यादा सिर दा बोझ होवे तलांजली दे दो, पर लीला भ्रष्ट कर देवे। और वाकई लीला ने भ्रष्ट कर दिता अगा चल के। मंदिर देवदासियां दे अखाड़े बन गए। मंदिर दे मांस ते शराब आम चलन लग पया, और जो थोड़े रूप विच अजे भी मौजूद है, काली दा मंदिर, कुमुखिया देवी दा मंदिर, उजैन दे भैरव काल दा मंदिर, उजैन दे भैरव काल दे मंदिर दे आज भी शराब दा प्रसाद है और शराब चढ़ाई जाती है। कुमुखिया देवी गुवाहाटी दा मंदिर, काली दा मंदिर कलकत्ते दा, दिन भर मांस दा प्रसाद है और सवेरे सवेरे संडे बकरे वढ़ के खून दे तिलक नाल ही द्वार खुल देने। देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर, धर्म दे नाते वैश्याले बन गए मंदिर, धर्म दे नाते शराब कबाब दे अखाड़े बन गए मंदिर। उंगल भी नहीं उठ सकती सी, क्योंकि सब कुछ धर्म दे नाते होया। राम दे मंदिर काम दे मंदिर बन गए, सदाचार दे मंदिर दुराचार दे मंदिर बन गए। ईश्वर नाम इबादत और उच्चे इखलाक दी थां ते दुराचार आ गया। विदेशियां दे मुंह दे च वी पानी आया। देश दी सारी दौलत, देश दा हुसन सब मंदरां दे च सी। सब कुछ नू छड़ के वो मंदिर ही लुटते रहे, और मंदरां दे चों उन्हां नू सोने दियां मूर्तियां, हीरे जवाहरात प्राप्त होए। देवदासियां दे रूप दे च हिंदुस्तान दी असमत प्राप्त होई। इसे नू ही बन के वो अपने मुल्कां नू गमन करते रहे, और इस तरह ये देश भ्रष्ट होंदा रहा और कमजोर होंदा रहा। तो सुनी पुकार दातार ब्रह्म, गुरु नानक जग माहे पठाया। जब जुल्म होण लग पे, और ये जुल्म होना सी हमला आवरां दी तरफों, जावरां दी तरफों, जरवाणियां दी तरफों, और होना ही सी। जिंदगी वाकई एक रास लीला है, पर मर्यादा ना रही। गुरु नानक दा जमाना आया, आपने लीला नू मर्यादा दित्ती, मर्यादा नू लीला दित्ती। गुरुद्वारे विच वी राग आए, संगीत आए, पर मर्यादा दे। पदार्थ आए लंगर दे रूप दे, पर मर्यादा दे। धन संपदा आई गुरुद्वारियां दे, मर्यादा दे रूप दे। पर ये मर्यादा सिर दा बोझ ना होवे। राग दी धुन कीर्तन दे राही, संगीत दी धुन कीर्तन दे राही, ताके जीवन देच रस बनिया रवे, और रस मर्यादा देच रवे। जैसे पानी दो किनारियां दे बंधन दे चले, जगत दी जीवां दी प्यास बुझांदा होया, वो वगदी हुई धारा सागर तक पहुंचती है। पर दो किनारियां दे बंधन तोड़ देवे तो खेतियां डुब के बर्बाद होंदिया ने। सुख दी थां ते उस वगदी हुई धारा तो दुख मिलन लग पैंदा है। वो वगदी हुई धारा बर्बादियां नू जन्म देंदी है। जीवन दी ए धारा सुख वंडदी होई, सुख लैंदी होई, अपना जीवन लक्ष्य पूरा करे, परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचे। ए दो किनारियां दे बंधन दे चले, और वो दो किनारे गुरु नानक ने बनाए, संतोख ते दया। धौल धर्म दया का भूत, संतोख था रखया जनसोत। अपने विच संतुष्टि ते दूसरे ते दया। ए उपदेश, ए संदेश, धन गुरु

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musa, baby. Yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल। अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: अष्टपदी
1: जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरकपाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: पाप को कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: ज्ञान की है मुक्ति अज्ञा सुख पावे
1: धनवंता हो कर भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: मैं हो जाए पुष्मंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सकले प्रथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नर्क स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्प की रेन जहाँ का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस कौसुख नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्मराय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु पर साधना नक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: कितन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विद्या के करे
0: नै तृपतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: भागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहाँ विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजा देख करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसै आवै न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशै समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पेन का हो किश होए
0: हांत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदैक ने विरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कटकट सुनी सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आर्जा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो ही मलीन
0: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा नह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत पावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दोख मैं दोख
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लगे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत पावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाई है
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रख न हार
0: नानक संत पावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इं बिरलाए
0: ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बुआर तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दिक्का तो रही पया
0: नानक जो तिस पावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टि कोई
0: जैसा पावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब करते इसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उसत करो दिन रात
0: तिसे त्यागो सास ग्रास
1: सब कछ वर्त तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस अपना नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तज हो सियान पुसुर जन हो सिमर हो हर हर राई।
0: ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੀਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਜੀਵਨ ਪਾਉ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕਹਿ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਪੌਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ
1: ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਮਾਨਕ ਕਹਿ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਵਿਘਨ ਲਾਗੇ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਬੇਖਾ ਪੁਰਖਾ ਰੰਗ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਧਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਪਛਾਣ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਾਥ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਪਰ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ
1: ਆਪਣ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ
0: ਜੁਗਤ ਰਚਤਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਰੱਬ ਕਾ ਕੀ ਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: सा ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदार
0: आप त्रैलोक कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजे
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजे
1: प्रगटे गोपाल महांत कै माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मिलाए
1: मिट गए बैर भय सबरीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आल जंजाल विकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबका मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ए फल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समृत शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटे
1: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत तांकी बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊच तांकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सबते ऊच तांकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: दुनिया दे सब तो वड्डी अकल चाहिदी है प्रभु नु समझण लई गुरु नु समझण लई इस चक्कर च ना पैना मंदिर दे च भीड़ है गुरुद्वारे दे च भीड़ है मस्जिदां दे च भीड़ है

0: तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी.
0: नानक सच ध्यान सच.

सतगुरु विच आप रखे उनका प्रगट आख सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम युग विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया।

0: PI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मैं अछूते विषय में आज विचार दे रहा हूं, क्यों लगा हूं, वो है चार युग। वैसे से भारत की मनीषा करीबन करीबन मनुखता में हर समय चार हिस्सों को वंडती रही है। उन्हें जीवन के ढंग भी चार वर्ते, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। ये चार वर्ण जीवन के चार ढंग, फिर चार आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। हैरानगी है पुराणा मत सनातन मत सबके मूल ग्रंथ भी चार ने, जो चार वेद कहलाते हैं, श्याम वेद युग रजत अथर्वण ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ऋग्वेद है श्याम वेद है यजुर्वेद है अथर्ववेद। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इस विषय में अपने विचारों में प्रोया और चार युगों की बड़ी सोहनी व्याख्या जगत के सामने रखी। चार युग इन्हों कई दृष्टिकोण के नाल नापना तोलना पेगा। प्रथम समय के चार युग, दूसरा स्थान के चार युग, तीसरा मन के मानसिक अवस्था दिया चार श्रेणिया जिन्होंने अभी चार युग कह सकते हैं। प्रथम समय में ऐसा मनिया गया है कि लख डेढ़ लख साल बाद युग बदल जाते हैं और पौराणिक ग्रंथों में युगों की बकायदा उम्र भी दसी गई है। इतने युगा बाद, इतने समय बाद युग बदल जाता है। युग की तब्दीली समय पर खड़ी है और हर युग का अवतार भी मनाया गया। दूसरा युग स्थान, तीसरा युग मानसिक अवस्था और एक किन्ने पहले मैं थोड़े सामने उजागर करने लगा। प्रथम समय दे चार युग इतिहास में वाचिए, आज तो 5000 साल पहले श्री राम है गए और आज तो कोई 3500 साल पहले श्री कृष्ण है गए। अंदाजन 525 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज है गए। पर ये ਤਿੰਨੇ ਆਉ

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुखे

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: समुंद शाह सुल्तान गिरहा से

ज्यादा इस्तेमाल करता सी, हर वक्त सोचा विच गलतान रहिंदा सी, हर वक्त सोच दी दुनिया विच रहिंदा सी। सोचना जीवन बारे, सोचना जन्म बारे, सोचना मरण बारे, सोचना संसार बारे और संसार दे करते बारे। अठे पैर जो सोचा विच लीन रहा, ऐसे पुरुष नूं साडे देश दे सियाणे मनुखा ने कह दिता है ब्राह्मण है। ये ब्रह्म दा चिंतन करदा, ये करतार ते संसार दा चिंतन करदा, ये हर वक्त बहुत गहरे चिंतन विच डुबिया रहिंदा। तो जिस दी दुनिया चिंतन सी, जिस दा संसार चिंतन ते खड़ा सी, जो अपने सिर दा बहुता इस्तेमाल करदा सी, आखिर बाद विच फैसला ये कीता गया है संसार दा सिर है, ये मनुखी दुनिया दा सिर है। और इतनी गल ते स्पष्ट है कि शरीर विच सिर दी अपनी खास अहमियत है। सिर अलग हो जाए तो बाकी दे सारे अंग नाकारा ने। सिर बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। और जो इस सिर दा बहुता ही इस्तेमाल करे, बहुती इस दी वरतों करे, ऐसे पुरुष नु आख्या गया ये ब्राह्मण है। ऐसे पुरुषां तो ज्ञान दा जन्म होया, कला दा जन्म होया, विज्ञान दा जन्म होया। जीवन दी बहुत सारी सुंदरता ते हलचल दा कारण वो मनुख बने जिन्हां ने अपने सिर दा बहुता ही इस्तेमाल कीता। दूसरी श्रेणी च आ जांदे ने ओ पुरुष जिन्हां दा रस अपनी बाहां विच सी, सिर विच नहीं सी। वो अपने हथ मजबूत करना चाहते सन, उन्हां दे हथां विच बहुत वड्डी सत्ता इकट्ठी हो गई। ऐसे पुरुष राजनीतिक कहलाए, राजा महाराजा कहलाए, जिन्हां दा जोर बाहां ते सी। हत्थां नूं मजबूत करना है, हत्थां नूं ताकतवर करना है। दो हत्थां विच हजारां हत्थां वर्गी ताकत पैदा करनी है। साडे देश च ऐसे सूरबीर होए जिन्हां नूं कहा गया सहन सर बाहू, हजारां बाहां रखण वाला। दरअसल हजारां बाहां मनुख दियां होंदियां नहीं। गल इतनी है कि जिहदियां दो बाहां विच हजारां बाहां वर्गा बल है, उसनूं आख्या गया सहन सर बाहु। जिहदे इक सिर विच दस सिर वर्गे सोचण दी शक्ति मौजूद होवे, बहुत सोच सकदा होवे, ऐसे पुरुष नाल असीं दस दा सिर भी जोड़े जैसे रावण दे नाल जोड़े गए। दस सिर इस गल दा प्रतीक ने कि मनुख बहुत सोचदा सी, बहुत सोचदा सी। इतिहासकारां ने रावण नूं ब्राह्मण आखिया, ब्राह्मण सी, बहुत गहरा चिंतन करदा सी, बहुत गहरियां सोचां विच रहिंदा सी। इह गल वखरी है कि जगत ने सिर्फ उसका एक पहलू वेख्या है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे उसके त्याग वैराग सूझ समझ की भी दात दिती गई है। रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट, उसने शिव जी की प्रसन्नता हासिल करने वास्ते बहुत वड्डा जप किया, तप किया और बहुत लंबी सोचा तो उलंघया। दस सिर इस गल का प्रतीक ने कि बहुत सोचता सी, बहुत सोचता सी। हजारां बावां इस गल का प्रतीक ने कि दो बावां विच हजारां बावां वर्गा बल सी, हजारां बावां वर्गी ताकत सी, सहन सर बाहु। तो जिस मनुख नूं अपने हत्थां विच ही रस दिखाई दे ते हत्थां नूं मजबूत करन विच ही वह अपनी सारी शक्ति खर्च करे, सारा समा खर्च करे, ऐसे पुरुष नूं आख्या गया एक खत्री है। पर जिस दी चेतना पेट दे आले दुआले इकट्ठी होवे, भोजन इकट्ठा करना है, अज दा भी इकट्ठा करना है, कल वास्ते इकट्ठा करना है, एक महीने वास्ते इकट्ठा करना है, जीवन भर वास्ते इकट्ठा करना है, समुचे कुटुंब वास्ते इकट्ठा करना है। जिस मनुख दी चेतना पेट दे आले दुआले घूमे और धन संचन दे विच ही मनुख दी रुचि होवे, ऐसे बंदे नूं आख्या गया वैश। मनुखां दी पहले वंड होई सी रुचियां दे आधार ते, सुभाव दे आधार ते, बाद विच ए वंड जात पात दा रूप अख्तियार कर गए। तो संचन करन दी बिरती मनुख दे अंदर बकायदा पाई जांदी है। मनोविज्ञानियां ने इस संबंध की खोज कीती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी गीटियां पत्थर संचन करदे ने, संग्रह करदे ने। कोई डाक दियां टिकटां ही इकट्ठियां करी जांदा है,
ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ

0: ਤੇ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਲੇ ਖਾਣਾ ਏ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਏ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਏ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ
1: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा ओदों तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुक कीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370 7 0।

0: प्राइस दीजिए, सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: तुहाडा घर तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट, तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है।
5: इसनु खरीदन जा वेचन लई तुहानु चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लई काम करे, जिस ते तुसी भरोसा कर सको, जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद, जो अपने 35 सालां तो वद्दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
4: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे गुरदयाल सिंह बाद।
5: सो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह अज ही गुरदयाल सिंह बाद नू
4: 604-351-5111 ते कॉल करो। 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।

इस प्रभ को भयो जन्म धरा जागया है। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कहत सुनाए कब बाच दोहारा। ठाड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर ने आए पंथ चल तब जगत में जब तुम करहो सहाय दोहारा। जे

मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सबै बहु भेद कह अमेक न जान्यो। श्री आसपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो।